हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरु पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कार दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास राऊ हर जन केवड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृप दास है।

मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो, जिस दियां ही बड़े आईया, कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द करस भागे, करस भागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तैं सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

प्रभधारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाउ। हर कीरत कल युग पद उतमा हर पाइए सतगुर माजा। हां बलहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम परगाजा। दर्शन पे साध मिलो बड़ भागी सब किल विख गए गवाजा।

0: मिली तेनों
1: थोड़े दिन हो गए
0: नौकरी है मिली तेनों आज तेरा सारे आकार सुबह सोया है आज तेरा सारे आकार रुक

रोज औरत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभाव नहीं बदलता, सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेडी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेडी गल सुभाव च शामिल हो वे, वो मनुख सहजे कर लेन, ते जेडी गल सुभाव च शामिल ना हो वे, जे वो करन दी कोशिश भी करे तो वो करन लगे उसनु उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभाव नाल शामिल हुंदा है, सहज सुभाव होए सो होए, सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है कहने निम नू कोई अमृत सिंह लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव दे अंदर। इसी तरह हजूर कहने ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन ऊपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी है, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है, तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहंदे ने भरिए।

वीर भी, गरीब भी, राजा भी, रंक भी, नंगा भी, पुखा भी, खुशी विच भी, गमी विच भी, देसी भी, परदेसी भी, काला भी, चिट्टा भी, पढ़िया होया भी, अनपढ़, सब अतृप्त रह जांदे ने। सारी मनुष्य जाति ही अतृप्त है। राउंड अबाउट एवरी बॉडी इज अनसैटिस्फाइड। मन दे लेवल से तुसी पुछ के वेख लो अपने आप नूं। मन अतृप्त है। साहस खटे लाखो तावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे, अनख भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, सर्व नाम रंग सर्व सुख होवे, बड़ फागी किसे प्राप्त। जेनु नाम मिल जावे, नामी नाल जुड़ जावे, उस सत नाल जुड़ जावे जो इसके जीवन का दाता है, जो इसकी मां है, प्यो है, भरा है, जिस तो इसनु सुकून मिलता, जिस तो इसनु जन्म मिलया है, जो प्राणा दे देन वाला है। कोई नहीं जानता है प्राण कितों आउंदा है, प्राण दी चलाउण वाला कौन है। इन वेदांत विच प्राण नाथ कहिंदे ने। असी इह ते जानदे हां प्राण चलदा है, मन सोचदा है, ज्ञान और कर्म इंद्रिय कर्म करदे ने, सुख भोगदे हां टाइम लई, पर कोई नहीं जानदा साडे किन्ने क स्वास ने और स्वास कितों आ रहा है। जिथों आ रहा है उत्थे ही प्राण नाथ बैठे और ओही सत है। इस शरीर दे किस भाग विच बैठा है? ये नाभी विच बैठा है, धुन्नी विच बैठा है। वास्तव च इत्थे भी बैठा नहीं, इत्थे दा दफ्तर है बैठण दा, ये रहिंदा ते किते होर है। वेदांत विच आया है पी दसम द्वार रहिंदे है, सचखंड विच रहिंदे है। पवित्र वाणी विच आया है कि ए मन दे उस हिस्से विच रहिंदा है जिनू अंतस्करण आखीद है, अख आखी दी है, और अख दा संबंध मन दे तीजे हिस्से नाल हुंदा है जिनू चित आखीद है, और चित विच ही ये कीतियां कर्मां दी मैल हुंदी है, जिस कारण ये बाहरों तक किन्ना भी साफ हो जावे पर अंदरों ये गंदा ही रहिंदा है, मन इसका मैला ही रहिंदा है। नहा भी लवे, कपड़े भी चंगे पा लवे, दान पुन भी कर लवे, तीर्थां ते भी चलिया जावे, पढ़ पढ़ा भी लवे, पाठ पढ़ियो और वेद बचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटको, अगक आबंद बाधे, प्यारे इन विद मिरण ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। प्यारे इन विद मिरण ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध बबेका। तां इस मनुख विच सब तो वड्डा गुण अकल दा है, सोझी दा है, और गुरदेव सोझी दे समंदर हैं। गुरु ही ये बुद्धि देन वाला है। ये बुद्धि नू ज्ञान भी आखते ने, सोझी भी आखते ने, अकल भी आखते ने, वेदांती लोग इनू विवेक भी आखते ने, सबुद्धि भी आखी दे। हरेक कोई चाहुंदे कि सानू चंगी बुद्धि आव जाए, तो चंगी बुद्धि वाले इंसान ने सोचिया कि मैं शरीर दे बंधन विच बंधिया होया हाँ। असी सारे बंधे हुए हाँ, मैं भी तुसी भी सब बंधे हुए। जे को संगत विच छुटिया होया होवे ते मेरी नमन है उसनों। ऐसे भी संगत होंदे ने जिहड़े शरीर च रहिंदियां छुटे हुए होंदे ने, उन्हों खालसा आखी दे, उन्हों संत आखी दे, सिख आखी दे, हरिजन आखी दे।

सुधार नहीं बदलना। ऐसा पैगोराज जी ने एक गल आखी, कहने लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुमने दी बेल में कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा भी तुम्मे दी पड़तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल रखता है, कहिंदे नहीं

हम मन तन काट काट किस दे, जो सतगुरु वचन सुनाए। मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुरु दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते, देहो सतगुरु चरण हम

कहो नानक हर आप मिलाए मिल सतगुरु पुरख सुख होई, गुर जेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस महला चौथा, हौ गुर बिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम से आया, जिस कारण हो तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृष्ट हर एक को जाता हर आत्म राम पछाणी, हौ गुर बिन खरी निवाणी, जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम, तिन चरण सरे।

मेरी श्रद्धा पूर हर राया, गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी, अन दिन राम गुण गाए, जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए। हो वारी गुरसिख मीत प्यारे राम, हर नाम सुनाए, मेरा प्रीतम नाम आधारे राम, हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस दिन करी निमख नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे, हो वारी गुरसिख मीत प्यारे, हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम, हर आपे मिले करे सोई राम, जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई, बहुत ज्ञान पलया न जाई, कर था के सब चतराए, गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिम अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे, सतगुर से परम पद पाया, हर जपया सांस गिरा से, जिनको हर प्रभ कृपा तारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरु बिन रह न जाई राम, हर नाम देवे मेरा अंत सखाई राम, हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाहीं, तिथे हर नाम छुड़ाया, तन तन सतगुर पुरुष निरंजन, जित मिल हर नाम से आई, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन न जाई, जिनी दर्शन सतगुर पुरुष न पाया राम, तिन नेफल जन्म सब बिरथा गवाया राम, नेफल जन्म तिन बिरथा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे, पागहीन हर दूरे, हर तिन का दर्श न करियो, जिनी हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरुष न पाया, हम चात्रिक दीन हर पास बिनंती राम, गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुरु करें भगति राम, हर सतगुरु करें भगति, जहाँ हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर बिन अवर न कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे, कहो नानक गुरु नाम दृढ़ाया, हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बात पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे तिन करें बिनंती, गुरु सतगुर पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समाप्त कर जाने, हर नाम हर राता, हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुखदाता, सुन गुरुमुख नाम सब बिन से होमे पापा राम, जप हर नाम रखेड़े जग तापा राम, हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हत दीना, जम कंकर मार बिदारे, हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप संतापा, सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा, जप हर नाम मेरे मन पाया राम, मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम, गुरुमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा, अन दिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन चाया, तिन परम पदार्थ पाया, जप हर नाम मेरे मन पाया,
हर तारो कृपा कर कृपा लेहो उबारे राम। हर तारो कृपा कर कृपा लेहो उबारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरण आया। तू दुख पंजन सर्व सुखदाता हम पाखर तरे तराया। सतगुर पेज राम रस पाया जन नानक नाम उधारे। हर तारो कृपा कर कृपा लेहो बारे राम। वडहंस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाया राम। तन मानस जन्म पुन पाया राम। मानस जन्म वड़ पुन्ने पाया दे सो कंचन चंगड़िया। गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया। एह देह सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया। वड़ पागी पाई

विकंपयंगा अनुत्तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वट पागी लंगे गुर खेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा करियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकरो करावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु खाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन सवास है थुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखम लगाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखाणिया हर राम नाम सलाहे हर प्रभु हर भगत हर जन

जड़ हर हर नाम रतन नाराम, जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सुख सने, गुर शब्द पाया हर नाम ते आया, वड पागी हर रंग हर बने।

से गुर अंक पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वश आया राम, मन वसत आया परम पद पाया, सातन कंस त्याई, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी। हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभु हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वद पागी हर हर त्याया। देखोड़ी जी जित हर पाया राम, मेरे सतगुरु जी मंगल गाया राम, हर गाय मंगल राम रामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देखोड़ी चढ़ हर पाया। राग वनहंस महला पंजवा छंक कर

पावजल जिता चूकी कान जवानी अस्थिर थिया अमृत पिया रहा आवन जानी सो कर लगदा सह समझदा हर का नाम अधारा कौन नानक सुख माने रली।

दीता राम सच सब त्याया मंगल गाया चूके मनो अदेसा तो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिथ जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तो पाना तांत्रिक अघाए राम मन थिया ठंडा सब त्रिशन बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लग हो सतगुर के कुर्बाना निरपो पै खसम रंग राते जम की त्रास बुझाए नानक दास सदा संग।

सब गुण तेरे ठाकुर मेरे कित मुख तुझ सलाही, गुण अवगुण मेरा किछ ना विचारिया, बख्श लिया किन माही। नौ निद पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाखे जी सगल विसूरे। श्लोक क्या सुने दो कूड वंजन, पवन चुरा रहा नानक सुनियर ते परवान, जो सुने दे सच धनी संत तिन कोल कुमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहेले, जिन हर हर रसना पनिया राम से सहज सुहेले, गुणे अमोले जगत उदाहरण आए, पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन को कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया, कहो नानक किस कोल कुमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। श्लोक लोयन लोई बिच प्यास न बुझे मूकणी, नानक से अखड़िया बयान, जिनी बिसन दो मापिरी। संत जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुर्बाने राम, से साची दरगे पाने राम। ठाकुर माने से प्रधाने, हर सेती रंग राते, हर वसे अघाए सह समाए, कट कट रमैया जाते। से सज्जन संत से सिखिए ठाकुर अपने भाने, कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सतगुरु बाणे। श्लोक देह अंधारी अंध सुंजी नाम विहुनिया, नानक सफल जन्म जय सत उठा सच धनी। संत तिन खनिए वंजा जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम, जन चास अघाने हर हर अमृत मीठा राम। हर मने मीठा प्रभु तूठा, अम्यो उठा सुख पए, दुख नास परम विनाश तंते, जप जगदीश ईसे जय जय। मोह रहत विकार था।

तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तुम दहलाया मोल कुन्नी पाई परी जानी अड़ा कट चलाया जानी कट चलाया लिखिया आया रुने वीर सबाए काया हंसिया वे छोड़ा जा दिन उन्ने मेरी माए जिहा लिखिया जिहा पाया जिहा पुरब कमाया।

एक है तंदा कूड़ा चार जहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना, जो में माना काहे गर्व की जय, जिस सेवे दर्जे सुपाई है नाम किसे काली जय, आगे हुक्म न चले मूले सिर से क्या विहाना, सार सिमरो मेरे पाइयो सबना इहो पयाना, जो तिस पावे समरथ सोती है हीलड़ा इहो संसारो, जल थल मैयल रव रहा सच साचड़ा सिरजनहारो, साचा सिरजनहारो अलखा पारो, ताका अंत न पाया, आया तिन

नारक कितनो बाबा रोई है, बाजी है यो संसारो, वढांस मैला पैला दखणी, सच सिरंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवदगारो, जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलख अपारो, दोए पुर जोड़ विछोड़ियन।

अधारो कुदरत तख्त रचाया सच निबेड़न हारो आवागमन सिरजिया तू सिर करने हारो जमन मरना आए गया बदते जियो बिकारो पूड़े नाम विसारिया बूड़े क्या चारो गुण छोड़ बिख लदया अवगुण सावन जारो सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सच्चे करतारो नारी पुरुष

नौ दर ठाके हुकम सच्चे हंस दया जैन आरे सा तन छुटी मुठी चूस विदनिया मृत कड़ा अंगन रे बारे सुरत मोई मर माइए महल रुनी दरबारे रोवो कंत महेली हो सच्चे के गुण सारे जल मल जानी ना वालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बानिया पंच मोए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण पया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सुजानिए फिर सचड़े हेत प्यारे तुसी रोवो रोन आई हो झूठ मुठी संसारे हौ मुठड़ी संदे कावनिया फिर छोड़ियड़ी विदन कारे कर कर कंत महेलिया रूड़े हेत प्यारे।

सचड़ा दूर ना पा लिए कट कट शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाणो दूर ना जानो जिन ए रचना राची नाम से आए का सुख पाए बिन नाम है पिड़काची जिन खापी जिद जाने सोई क्या को कह वखाणो जिन जग

आप निरालम तंदे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पे दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप सुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी।

है मिल रोवे गुण सारे वा रोवे माया मुठड़ी तंदड़ा रोवन हारे वा तंदा रोवे मैल न तोवे सुपनंतर संसारो जो बाजी गर पर मैं पूले झूठ मुठी अहंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कम

परवा कूड़ लब जा खाए न पासी अगे लह न खाओ अंतर आओ न बैठो कहिए ज्यों सुन्ने कर काओ

मिले जे सतगुरु लागे साचे पाए, सतगुरु सदा दयाल है, अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए, दूजा पाव गवाए, सच्चे ही सच राती, सच्चे शब्द सदा सुख पाया, हों मैं दई पराती, फिर निर्माए

नानक था तन मिले मिलाई फिर अंतर सदा संभाले इक रोवे फिर बिछुनिया अंगी ना जाने फिर है नाले वडहंस महला तीजा रोवे फिर बिछुनिया मैं फिर सचड़ा है सदा नाले जिनी चलन सही जानिया सतगुर सेवे नाम संभाले सदा नाम संभाले।

किनारे मिल सतगुर के हुकम पाया। अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सवाया। अपने गुरु को तन मन दीजे ता मन पीजे कृष्णा दुख निवारे। मैं फिर सच पछाणिया होर फूली अवगणियारे। सचड़े आप जगत पाया गुरबिन कोर अंधारो। आप मिलाए आप मिले आपे दे प्यारो। आपे दे प्यारो सहज व पारो गुरमुख जन्म सवारे।

सुख ना होई, ऐसे कमावे को फल पावे, मन मुख है पत खोई, जमपुर कोर अंधार महागुबार, ना सुख है।

जिन्नी पुरखी हर नाम चितनाया तिनके हों लागो पाए काया संचन ताकी है जा सतगुरु ले मिलाए तो सच्चा सच सराई है जे सतगुर दे बुझाए दिन सतगुर परम पुलानिया क्या मुंह देसन आ गया जा।

अवर ना सूझई इस आगे कहिए जाए तो सच्चा सच्चा लाये जे सतगुरु दे बुझाए जिनी सचना सच्चा लाया हौसिन लागो पाए ते जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मन सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चे सरनाए सच्चे सहज सुभाए नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुरु दिया बुझाए अंगन भगत करें रंग राते नानक सच समाए जिनी सचड़ा सच के आया हौ तिन के लागो पाए वढ़ंस की वार।

केवड हंस है हत नाम उद्धार हत संग्रह है हद हत रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर की थी करतार नानक हों तिनके बलहार है जो अंगन जपे मुरार महला तीजा मैं जानिया।

सिर तन ऊपर पाव पौड़ी, तू आपे ही आप है, आप कारण किया, तू आपे आप ओंकार है। को अवर्ण बिया तू करण कारण समर्थ है, तू करण सोचिया, तू अनमंगिया दान देवना सबना जिया। सब आपको सतगुर वाहो वाहो, जिन दान हर नाम मुख दिया। त्रोक महला तीजा त्याग सब आकार है, निरपो हर जियो कोए, सतगुरु सेवे हर मन वसे, किथे पौ कदे न होए। दुश्मन दुख किसनो नेड़ न आवे, कोए न सके कोए, गुरमुख मन विचारिया, जो चित पावे सो होए। नानक आपे ही पत रखसी।

सच रते से ना विछड़े सतगुर सेव समाए पौड़ी किस मिली है सतगुरु सज्जने जिस अंतर हर गुणकारी किस मिली है सतगुरु प्रीत में जिन हमें विचों मारी तो सतगुरु पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्टि सवारी नित जप्यो संतो राम नाम पौजल वित पारी गुरु पूरे हर उपदेशया गुर विचड़ो हो सदवारी श्लोक महला तीजा सतगुरु की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सार ऐसे मिलन वडियाई।

हर हर मुख पाया। भगत अच्छल हर बिरद है हर लाज रखाया। तेरी बड़ी सिफतां सुनी तू भगत अच्छल है, पर मैं तैनू दीन दयाल आख के बेनती कर रही हूं। तू भगत अच्छल है, भगतां दी लाज तां रखदा ही आया है, पर मैं तैनू दीन दयाल आख के संबोधन कर बेनती रहमत मंगना।

más ना मेरी चोरी पा मैनू किनारा मिल जाएगा मेरा मकसद पूरा हो जाएगा क्यों क्योंकि तेरे नाम के पहर विच तेरा नाम ही एक हुक्म है जिस हुक्म के अधीन पहर विच सारा ब्रह्मांड विचर रहा है हुक्म होती है जिन्हों आप दो दिन का जिक्र कर रहे हैं कि सारा संसार सारा ब्रह्मांड सारी कुदरत उनके हुक्म विच है गुरु ने इस गल का जवाब दिता आप रोज पढ़ने

वो कमी का नाम है। सारे जीव जंतु, सारा ब्रह्मांड, सारी कुदरत, सारी कायनात जेड़ी उनके हुक्म विच चल रही है, वो हुक्म का रूप की है नाम। इसलिए गुरु ने आखिर तक कहने लगे

0: लो, नाम ही हुक्म है। जेड़ा हुक्म, जेड़ा नाम हुक्म दे तहत इस सारे संसार में चला रहे हैं। यूं कहने में देखता कि सारे संसार पे हुक्म चल रहे हैं। कभी तो कई
1: हुक्म अंदर सबको, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म।

कृष्ण जन्माष्टमी नूं क्योंकि अष्टमी दे छेत्र दे दिहाड़े जन्म मनदे ने। गुरु साहब कहंदे ने कि सारियां छित्तां छड छड के गोविंद रब जिहड़ा है ओह अष्टमी छित्त नूं उहने जन्म लिया, बाकी छित्तां विच ओह रब नहीं, ओह परमात्मा नहीं। जिस तारीख नूं जम्मिया, जिस युग विच पैदा होया, बस उसे युग विच ही ओह ते सिर्फ द्वापर विच पैदा होया, त्रेते विच उहदा संबंध ही कोई नहीं। त्रेते विच रब किहड़ा सी? हर युग युग तो रब वखरा मनेगा। तो गुरु आखिया ने मैं उस रब की गल करना जो आदि सच है, जुगाद सच है। तू नहीं आख सकता कि किस त्रेते विच पैदा होया, तेन आखना पड़ेगा केवल द्वापर। तू नहीं आख सकता राम द्वापर विच पैदा होया, तू आखेगा केवल त्रेते विच। और गुरु ने आख्या इसलिए मैं तेन स्पष्ट करना चाहना, जुगै जुगै के राजे की ये गावे कर अवतारी। युग युग दे समय समय दे राजे पैदा होए जिन्हां नूं अवतार करके लोगों ने गाविया। कहने लगे ख्याल करी भगवान नहीं, क्योंकि भगवान किसी समय का मोहताज नहीं, भगवान किसी समय का कायल नहीं, उनके बंधन विच नहीं। वो तो आप सच है, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी ऐसी, उदों भी ऐसी। कहने लगे अष्टमी तीर्थ गोविंद जन्माष्टमी, काहे रे नर करत कचरायन, जन्म मरण ते रहत नारायण। वो तो जन्म मरण तो रहते, उनके जन्म की तू कोई तारीख नहीं निश्चित कर सकता, उनके जन्म का तू कोई स्थान नहीं निश्चित कर सकता, पर राम के जन्म स्थान भी तू दिन रात लग रहे। कह लगे नहीं, हर किसी को भगवान नहीं आख्या जा सकता। और कहते बेटियां कौन कहानियां, उन्हों कहानियां बन गई, रामायण बन गई, गीता बन गई। जैसे नचे मंगते हूं नाटककार ने अपना काम शुरू कर लिया, राजधारी इकट्ठे हो गए, उन्होंने रामलीला किसी लीला खेडनी शुरू कर दी। जैसे नचे मंगते गिड़मड़ पूरे साल नचते कटते, बाजारी बाजार में आए कंधे बाजार, जिथे इकट्ठ वेखते, जिथे बहुता काफला देखते दे, मेले लगते दे। जदों कभी कोई मेला लगता उत्थे बाजारी भी पहुंच लेंगे अपना बाजार लाने लिये। रामलीला हो गई तो किस लीला हो गई, गावे राजे रानियां, राजे रानियां का भेस बना दे, बोले आल पताल, ते आल पताल जो मुंह आउंदा, जो मन में ख्याल आउंदा, वो उन्हां दी नकल करने वास्ते बोल दे। ते बनावटी नकली, क्योंकि रूप बनाना हुंदा है ना, इसलिए नकली गहने पा लेंगे जेडे लगते भी उन्हें लखा करोड़ों के पाए हुए राजे पाते, उन्होंने राजे की नकल करनी होंगी। राजधारियों को इन्ना कीमती गहना कितों आवे, पर लखा रुपया के कीमती गहन की नकल करने वास्ते इं पाते भी इं जिसने जिन्हें लख टकिया के मूंदड़े, लख टकिया के हार। गुरु आखते ने भलिया ए तेरे राजे रानियां भी झूठे, ए तेरा आराम भी, ए तेरा कृष्ण भी भगवान नहीं अवतार है। अगे तू गावे गहने पाए हुए ने ए भी झूठे, ते विश्वास कर जिस तन ते पाए हुए ने वो भी झूठा। कह लगी जिस तन पाए नानका,

चेतन होए चार। सच्चे रब की कहानी, सच्चे अकाल पुरख की कहानी तू केवल झूठ के बेस से खड़ी कर रही। साढ़े भी कई बाजारी बन बैठे सर, पिछले भी आए बीच साढ़े भी कई बाजारी बन बैठे। उन्होंने भी रामायण के पाठ कराने के हवन जग शुरू कराते सर। पता नहीं जा तो आस्था की वार रोज सुनते नहीं हूं, जिंदगी अंदर समझते नहीं। गुरु ने बाणी ख्याल दिता क्या लगे वो भलिया सब कुछ झूठ का प्रेम का नाटक का इकट्ठा किया, क्योंकि नाटक से झूठ नहीं कहते, इसे भी उनका प्रभाव कोई नहीं होता। तो फिल्म अंदर कई लोग मरते ने पर कभी तुम अफसोस कर गए उनके घर तुम्हें पता फिल्म नाटक। कई लोग जन्म लेंगे तो कभी उधारी देने गए पता नाटक, उनके असलियत नहीं ज्ञान नहीं। गुरु कहने यो कारण है इन्हों रामायणा गीता के पाठ से हवना यज्ञा इन रामलीला कृष्ण लीला ज्ञान कोई नहीं। हां मन परचावा जरूर वो बाजारियां बाजारियां।

सतगुरु मिले सच मिलता है। क्यों मिलता है, किवें मिलता है, कहने लगे इसलिए क्योंकि गुरु पहला सच न बिठाने की थां बनाने लई होमे आपा गवांदा है। पहला अंदरों होमे कर ताकि हरी टिक जाए। होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बच्चे इकट्ठा है ते हों की है आपा ते गुरु रहमत करके जो हरी नू अंदर टिकाउंदा, जो सच नू अंदर टिकाउंदा ना, पहला आपा गवा दिंदा है, अंदरों हों कढ दिंदा ताकि हरी टिक जाए। सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया। जो आप गुईजा बस उदो हर पास सच ही सच दिसन लग पे, हूं ओनू सच कित भागन जाने की लड़ नहीं, ना ओनू कोई भुलेखा पा सकता है कि राम रवाल सच हो सकता है, ना ओनू कोई मुगालता पा सकता है गीता ज रामायण ज खेडा के रामलीला सच हो सक, कोई मुगालता नहीं, क्योंकि सच में बुझ लेना है, ओनू सच बुझा दिता जाता, सच की पहचान करा दी जाती है। गुरु कहते

सत्यो सत्य बुझाया दीन दया। कभी सच भी मन कर रही है बुझा देता पहुंचा देता उस मंदिर से जिंदी ढूंढ कर रहे

सब पाओ तो सुख मने आवश्य सदा कुर्बान किता गुरु विष्णु जिसकी आए बढ़िया कहे नाम सुनो संतो सब डरो पे आरो काचा नाम मेरा आधारो वागे घर सुबह घर सुबह।

पहला नित तंको आतिक घर अनाजवासनों बड भाग्यो सगल मनोज पूर पाया उतरे सगल।

सतगुरु रहाओ दी पंक्ति, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। गुरु जो गोपाल सृष्टि नु पैदा करने वाला वाही गुरु है ना, ओदा रूप हन मेरे शब्द गुरु। धन गुरु गुरु नानक साहब मालिक दा रूप हन। परमेश्वर विच ते गुरु विच कोई फर्क ना जानना, गुर परमेश्वर एक हो जान। जो तिस भावै सो परवान। मेरे गुरु ते बख्शिश कीती सी वाहेगुरु ने। जदों कमाई संपूर्ण हो गई ना, पुरातन जन्म साखी पढ़ो, कहिंदे हन बाबा सचखंड बुलाया गया। केवल बुलाया ही नहीं गया, पहनाया गया। नानक ए नाम दा प्याला है, तू दस्त कर प्रवान कर इस नू पी। गुरु नानक साहब जी ने वो प्याला नाम दा गरीबी दा प्रवान कीता। वाहेगुरु ने एक बचन कहा, नानक मैं पार ब्रह्म परमेश्वर ते तू गुर परमेश्वर। नानक जिस ते तेरी नजर उस ते मेरी नजर, जिस ते तेरा कर्म उस ते मेरा कर्म। जद जिस ते गुरु नानक दी नजर है उदे ते पार ब्रह्म दी नजर है। जिदे ते गुरु नानक साहब जी दा कर्म है उदे ते मेरे वाहेगुरु दा कर्म है। ते फिर आपा क्यों ना गुरु दे कहे विच आ जाइए, क्यों ना गुरु दा कहा मन लईए। जे असी दुखी हाँ ना, आप ही विधान नू तोड़ के दुखी हाँ। सतगुरु कहिंदे हन, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाति सरण पया सुख पाईऐ बहुड़ दुख ना हो। सतगुरु ते उच्ची आवाज करके ना, बां उच्ची करके उच्ची आवाज नाल कहिंदे हन। धन गुरु गुरु रामदास जी दा वचन है, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काडी बाह को कीजै। सतगुरु उच्ची आवाज उच्ची बाह करके आवाज दे के कह रहे हैं, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काडी बाह को कीजै। जे आत्म कौ सुख सुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवीजै। जे आत्मा दा सुख चाहुंदे हो ना, कदी दुखी ना होइए, ते फिर सतगुरु कहिंदे हन गुरु दी शरण पै जाओ। गुरु दी शरण की पैना है, कंप्लीटली सरेंडर। ए नहीं कि अद्धियां क गल्लां मन लईए, जिथे अपनी मर्जी, जिथे अपने मन दा सुभाव फिट ना आवे उथे इनकारी हो जाइए। मनण दा यतन करिए, नभा मेरा गुरु दे देगा। असी प्रवान कर लईए, सतगुरु जी हिम्मत बख्शो, सतगुरु जी रहमत करो। सच है आपा सिर्फ तुरना ही है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। एदा मतलब है नभाउणा ते सब कुछ मेरे गुरु है। आपा सिर्फ एक बारी अपना आप सरेंडर करन दी लोड़ है। सतगुरु जी आप कृपा करो, अपनी प्यारी मत गुरमत दा मैं धारनी बन जावा, सच सदा वास्ते सुखी हो जावा। ओ आत्म टिकाणा जेड़ा नामदेव जी मंगदे हन ना, जहां जहां ध्रुव नारद टेका। हे मालक, जिथे जिथे तुसी नारद नू ध्रुव वर्गियां दी आत्मा नू टिका दिता, नैक टिकावो मोहे, तेरे कोल मालक कोई घाटा नहीं। रती किते बख्शिश कर देवे तू मैनू भी टिका सकदा। नैक टिकावो मोहे, तेरे नाम अवलंब बहुत जन उदरे, नामे की निज मत एह। मेरी नामदेव जी दी निजी ये दृढ़ता नाल मत है कि तेरे नाम नाल बड़े बड़िया दा उधार हो गया। हे मालक मेरे ते भी कृपा कर, मैं नाम दी बख्शिश दा पात्र बन जावा। हुण ए सुख फिर कैसा है, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चराने, साध संगत मिल मुआ जीजै। हुण सतगुरु आदि पंक्ति बख्शिश करदे हन। हुण अनुष्ठान नू सूझ मिल जांदी है, गुरु दी शरण विच पै के ना। अब नासी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई।

क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलो सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा रहो। अंधियारे दीपक चाहिए, एक बास्तया गोचर लही बास्तया गोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई। कह कबीर अब जाने, जब जाने तो

गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन के, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जप दिस दूर, गावे को विख हाजर दूर, कथना कथी नाव कोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दिल दे थक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसे वे प्रवाह, साचा साहेब साच नाए, पाख्या पाऊ अपार, अखे मंगे देह दीन, दात करी दातार, फेर के अगर रखी है जित दिस दरबार, मोह के बोलन बोली है जित सुन करे प्यार, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक ए वह जानिए सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तन पाया मान, नानक गावी है गुणी निधान, गावी है सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाई, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहे आसमाई, गौरीशर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हों जाना अखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विस्तर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस भावा, बिन भाणे के नहाई करी, जे ती सिर उठो पाई वेखा, बिन करमा के मिला लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुने, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विस्तर न जाई, जे जुग चारे आर जा होर दे सोनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोई, चंगा नौ रखाए कहे जस कीरत जगले।

मन नानक पवे ना भेख ऐसा नाम निरंजन होवे जी को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दुर्गा मान पंचे सोहे हैं दर राजा पंचा का गुरु।

असंख नाव संख थाव गम गम संख लो संख कहे हैं सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग खाण जिने लिखे तिस सिर नाहे जय फुरमाए दिवत पाए जेता कीता तेता नाओ बण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहां विचार वर न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन लेहे पाणी तोता उतर सुखे मूत बलीती कपड़ होए दे साबून लिया तोए भरिया मत बाबा का संग तोपै नाव कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिखला जा आपे बीज आपे ही खा नानक हुकमी आव जा तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर गातु तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होए सुवास्ताद बाणी परमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ कवण सवेला वक्त कवण कवण सित कवण वार कवण सिर

अनदान है दरवर्ग स्वर्ग है अनिल है अनाद है अन अजय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है गंज है पांझ है जूझ है चांझ है मी कर भी कर दंद है बंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह जा है अनंत है महंत है लीक है नरसरी का नरदम्ब है सम्भ है अगम है जम है भूत है सूत है अलोक है सुक है कर्म है परम है अजीत है पीत है भाग है मानन दाननी कह फ्री कहे पुजंग प्रयात शंब नमो सर्व मान्य समाप्ति नदाने नमो देव देवे अपेखिय भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथ नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो लो नमो चंद्र चंद्र नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बद बदे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परभंगी परमाथे समाधि विभूते कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेशंग परम रूपे नमो जोग जोगेशंग परम सिद्धे नमो राजेशंग परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेशंग परम जुगते नमो नित नारायणे गुरुर्कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाहं नमो भूप भूपे नमो दान धान्ये नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संघनाने नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सिद्धदा बुद्ध सदा सचदा आनंद सर्वं प्रणासी रूपे रूपे समर्पण निवासी सदा सिद्धदा बुद्ध दा वृद्ध करता अधो उर दर्दंग गंगो करता अदो और दर्दंग अगंगो घरता परंग परम परमेश्वरंग ब्रोश बालंग सदा सर्वदा सिद्धा दा दयालंग शेदीय बेदीय नामंग कामंग समाज तो ब्राजी समाज ता सुधामंग तेरा जोर चाचरी शंद जले हैं थले हैं पिधा भे हैं प्रभु अजुआ दे सब भे सहे पुजंग प्रयात शंद अगाध्य बाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज दीन धान्य नमाज तो इंद्रनाथे नमाज तो परमाथे नमाज तो गंजे नमाज तो पंजे नमाज तो काले नमाज तो पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व भेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व भीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे दर्पंगी नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजय बीजे समातंग प्रसिजे

0: अमृत कर में अमृत धर्म अखल जोगे जल भोगे जल राजे अटल साजे अखल धर्म ला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग भेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत तक प्रसाद आदि रूपन आदि मूर्ति जोन पुरुख पार सर्व मंत्र मान देवा बेवाद उदार सर्व बालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप रसाल नाम ठावना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुख उदार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा फैल अनुराग नाम काम भीन पिंगत तामू न जाय सर्वमान सर्व सर्वान सर्व मान ताहि एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अंत को पर एक देव देव न जानी जे बेद और कथेव रूप रंग न जात पात सुजानी के जेब तात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चदर जाक मान ही प्रतीन लोक चौदह के विखय जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरुख अपार सर्व विश्व रचो सुयम भवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुख देश धर्म धाम सुभर्म रहत भूतल कपेश अंग राग नंग जग जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपामी कानो सत एक पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप सूत अंगहीन भंग नात्मिक पुरख पार सर्वलायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व दयान पेख सर्वशास्त्र न जानी जे रूप रंग कर रेख परम वेद प्राण जा कहे नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नई बोचित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दिन नाश राजन बाह शान शाह राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंगन रंग कालन काल अनभूत अंग अपापंग गर्मित पार गुणगन उधार मुनगन प्रणाम निर्भन काम आत दुत प्रचंड मित गति अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाड्या आन दंड भाड्या चाचरी छंद दव प्रसाद गोविंदे मकंदे अधारिय पारे हरियंग करियंग नामे कामे बजंग प्रयात छंद चदर जकर करता चदर जकर हरता चदर जकर दाने चदर जकर जाने चदर जकर वरती चदर जकर भारती चदर जकर बाले चदर जकर काले चदर जकर बासे चदर जकर वासे चदर जकर
1: किसी ने बीबी ने वचन किया तो ससुरा ने ओ जी सास की अडोल कद तुझी कह लगी देख नी भेने तेरी गल का कितना गुस्सा किया है अलूर मुस्कुरा पे कह लगे ओ मर्दानिया दुनिया किसे पास भी छ आखो सी भाई किसे पास दुनिया बाबा जी कह रहे सन मकान भी नहीं एक होती है पर दुनिया दिया दो नहीं आखो सी दो नहीं जे चिटे कपड़े पा लो ये तो बड़ी आकर होगी जे मेरे पा लो कहते भुखा पर लग गए हैं दो नहीं जो दो नहीं तो प्यारी सात संघ से उस प्रेमी ने किया बाबा जी
0: के रोजीर जा कर ही मेरे हाक है के पाक बे आवें के गैबुल गैब है के गए के आप बोल गुनाह है के शाह नशाह है के कारण गुनंद है के रोजी दहन है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गावने हैं के सर्वत्र पावने हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है।

एवं प्रवाह जय जाय भगवती शांत दल प्रसाद के जार जूर है कि आज रहूर है मे सो सलाम है सुहा तलकलाम है कि साहब दिमाग है कि उदलो जराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी रहन है कि राज करहन है करीमल कमाल है कि उसल जमाल है करीमल खराज है करीमल नवाज है हरीफुल सकाना है रासल पकाना है कलंकंग प्रणास है सुहा तुल निवास है।

स्वीं कव्योवाच विनती जाओ पई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत बारा हमरे दोष सब तुम।

रक्षा हुए दाए सब काला दो ठहरे ठहरे दत काला कृपा दृष्ट धन जहन हरे हो दागे दाप धन कमो हरे हो हरिद सदकर्मो सब हो दोष शाश्वत कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभार काल भाज दाय बार

माता के उदर में प्रतपाल करे सो का मनोवसारी है मनो के वसारी वरदाता जी अगन में आहार पहुंचावे उसनु के पो न सके जिसनु अपनी ने बुलावे अपनी ने व्यापे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक वरदाता सो का मनोवसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सभी को जही करता के दर जाया जां तिस बाणा जमया परवार भला पाया लिप छुटकी लगी दृष्णा माया मरवरदाया ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ

0: FM रेडियो CIS के 94.3 सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

धर्म दया का पूत संतोख था वृख जिन सूत जे को बुझे हुए सत्यार तौले उपर के तापार धरती होर परे और तस्ते बाल तले कमजोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखा।

अरे दीन बंधु संके हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा।

0: संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लेंदे आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब कुछ जाए। एक बहादुर सिमरिया घर नो दयावे ताए, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब गुरी बनवाज दातार जो सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाही जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान कर बोलो श्री वाहिगुरु जी। गुरु साहब जी दे पंच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाई, वे ते अंडठ कीता जिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान कर बोलो श्री वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेस दिते बंद बंद कटाए, खूपियां नुहाइयां चरखड़ियां ने चढ़े, आर्या नाल चराए गए गुरुद्वारा की सेवा ली, कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया, सिक्की केसा स्वासा नाल निभाए, जिन्हां दी कमाई दा ध्यान कर बोलो श्री वाहिगुरु जी। प्रथम सरबत खालसे जी करदास, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सत्ता सर्व सुख होए, जाना खालसा साहेब तां तां रख्या रहा देख ते फतेह, बिरत की पैज पंथ की रिजीत, श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले, खालसे जी हर बंदान फतेह। बोलो श्री वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवां मत उची मत पदा रखा, आप अकाल पुरख ज्योति स्वरूप सतगुरु गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह, आप जी चरणा अरदास बेनती दोधड़ी प्रार्थना की विनवा सच्चे पातशाह, आप जी दे प्यारियां गुरसिखा ने नितनेम जी दे पाठ कीते हैं, फुलां चुकां बख्श लैणिया बाणी सचखंड दत्तवान करनी, अगों वास्ते चेता सुधार सुखता बख्शनी की विनवा सच्चे पातशाह, पढ़द्या सुनद्या दे कार्ज रास करदे सर्वत कार्ज रास करदे होए सतगुरु संसार सुख शांति आनंद मंगलाचार बख्शने सब का भला करना, गरीब नवाज के पातशाह अपने प्यारियां गुरसिखा सेवकों के सिर हाथ रखना, बरकता बख्शनिया दे रोकता की दात बख्शनी, गरीब नवाज के पातशाह जुग जी हजूर दे दर ते आवे सोहरा जी जावे, सिख सेवक माई भाई पढ़ते सुनते सरबत लाएवन सरबत के कार्ज रास, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: किरबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
4: Raja kahiya O man mein puma ठाकुर मैं ठकुराई तेरी।

0: कोई ना कोई जरिया, क्योंकि कारण ते बनाना पड़ेगा ना रब नूं मजबूर करने वास्ते, वह कर सके सारा कुछ, वो कर देगा, हाँ कर देगा, की करना पड़ेगा, नथिंग, जस्ट तरीका मेरे कोल है, उपाय मेरे कोल है, इस उपाय विचों सारे टूने टपार तवीत धागे नग की कुछ नहीं निकल रहा, अमूल भाव है। माफी मंगदे मैं लफज कह रहा, किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं, बंदा मानसिक रूप में कितने स्टैंड करता है, उहदे आले दुआले देखो, बांह ते चार धागे बद्धे ने, उंगलां नगां नाल भरियां ने, लत्तां ते गुट्टां दे आले दुआले तवीत लटक रहे ने, समझो मानसिक रूप च बड़ा कमजोर आदमी है। ये अपनी काबिलियत, अपने आत्म विश्वास, अपने इष्ट दे भरोसे, रब्बी शक्ति दे वजूद दे उस विश्वास, उस सब तो टुट चुका है। ही इज द फॉलोअर ऑफ ए एनी काइंड ऑफ बड़ी छोटी सोच रखने वाला, जिहड़ा बड़ा अनवाइज किस्म का बंदा है, उहदा फॉलोअर बन के तुर रहा है। ये जिंदगी का मूल एहसास है। फिर ऐसे जिहदे अमल ने, जिहदे कर्म ने, वो कहे मैं परम आनंद नूं प्राप्त हो जावांगा, किवें हो सकता है, किवें हो सकता है, क्योंकि मूल सोमा जिहड़ा परम आनंद देना सीगा, उहदे नाल ते नातेदारी, आत्म विश्वास, आत्म श्रद्धा, आत्म भाव, उस सारे नूं नाल लैके बननी सी उहदे वास्ते, उहदे नाल, क्योंकि कल रोज़ आपने पूरा शब्द सरवण किया कि उन्हें दुहागण या रांड नहीं होना, उन्हें सुहागण होना है, उन्हें एक दा पल्लू फड़ना है घुट के, ते जिवें एक दे उस पल्लू नूं घुट के फड़ लिया उसने, उस तों बाद फिर परम आनंद है, आ प्राप्ति है शब्द दे अंदर। समा समाप्ति वाले पासे जा रहे हैं, पंक्ति बा पंक्ति असीं अर्थ करन दा प्रयास करते हाँ। मेरे गुरदेव कह रहे सन, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, मन दे नन्ने नूं सिहारी पईए, तन दे नन्ने नूं सिहारी पईए, मन विच तन विच बोथ आर नैसेसरी। मैं चंगी स्रोत, चंगी किस्म की विचारधारा सुन दा आदि हाँ, सुन के छड़ दियां ये ना होए, सुन के जिन्ना मैं अपना सकां, जिन्ना मैं उन्हूं जी सकां, उहदे वास्ते यतनशील होवां, मन करके फिर हौली हौली तन करके उहदे नाल जुड़न की ट्राई करा, प्रयास करा। साहिब पातशाह कहिंदे जदों मन करके तन करके रव रहा, रव रहा मीन रवण हो गया बंदे दा। अज जिहड़ी दुनिया च असीं रहिंदे आ, अक्सर गल कही जांदी है फलां आदमी आ गल कह रहा सीगा, बट आई हैव लिटल बिट डाउट। की होया, क्यों डाउट है? डाउट यह है कि उहदी बॉडी लैंग्वेज ये गल नहीं सी कह रही, उहदी जबान बयान कर रही सी पर उहदी बॉडी लैंग्वेज इस चीज़ नूं नहीं सी बयान कर रही। मूल भाव है, जे मैं जबान तो बाणी बोल रहा, जबान तो बाणी पढ़ रहा, कन्ना तो बाणी सुन रहा, मेरे अमल भी तो कितना कितने बोलन ना, माफी चाहगा मैं। देखो किसे ते उंगल उठानी बहुत सौखी होंदी है, अपने गिरेबान विच चातना बहुत औखा होंदा है, बड़ा कठिन है। आही स्टेज ते असी हर रोज, इन हर स्टेजां ते जो इस किस्म दे नाल गुरमत मर्यादा नूं पालदिया होया, गुरु पातशाह की बरकत सदका सानूं प्राप्त होईयां ने, असी रोज पढ़ते हाँ, बोलते हाँ, सुनते हाँ कि साहिब महाराज के वह बचन कि पंड जमी है, पंड निमी है, पंड मंगण व्याह हो, पंडो होवै दोस्ती, पंडो चलै रह, पंड मुआ पंड पाली है, पंड होवै बंधान, सो क्यों मंदा आखी है जित जमै राजान। फिर भी साढ़े समाज कुड़ियां मारियां जांदियां ने, बड़ियां स्पष्ट दाने लोग कहिंदे ने, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई एग्जाम्पल करन दी लोड़ नहीं, असीं कित्थे स्टैंड करदे हां, माफी चाहांगा मैं। असीं हर रोज ये चीज़ पढ़ते हाँ, साडा समाज किहड़े पासे तुरे, जस्ट एक छोटी जी चीज़ मैं तुहाडे सामने रखी है। जे इस किस्म का अमल साड़ी जिंदगी दे अंदर रव रहा है, की असी एहसास करते हैं? गुरु पातशाह ने कहा, तू उस परम आनंद नूं प्राप्त करना है मन ते तन, मन करके स्रोत करके विचार करके। तो ऐसी आला किस्म की रचना नूं पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं उहदे नाल, तन करके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अज ही यतन कर, प्रयास कर। बहुत सारे इशूज ने ऐसे जिन्हां तुसीं गल कर सकते हैं, पर क्योंकि बचन आ रहा है मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा। जदों मन करके तन करके प्रभु रव जाएगा फिर परमानंदा सोमा उहदी अहमत दे नाल की हुंदा है। जे कमरा बंद है, लाइट ऑफ है, तो की है? हनेरा है। हनेरा किस चीज नूं जन्म देगा? हनेरा जन्म देगा उल्लुआं नूं, हनेरा जन्म देगा मकड़ियां नूं, हनेरा जन्म देगा चामचिड़िकां नूं, हनेरा हर अलामत नूं लेके आएगा। बल्ब जगा दिओ, सब अलामतां दौड़ जाणगियां। बस आ गल है, जिवें परम आनंद आया, प्रभ आया, उहदा नाम, उहदी हस्ती, उहदा अहसास आया। गुरु अर्जन पातशाह नूं इस तरह भी बयान करदे ने, वो कहिंदे ने मैं चैलेंज करके कह सकदा हां गुरु अर्जन महाराज की पातशाह कहिंदे नस वंजो किल विखो, हे किल विख बिरतियो हुण दौड़ जाओ, तुहाडी कोई पाया नहीं जानी मेरे उत्ते। तुसीं मैनूं नहीं किसे किस्म दे नाल दुखी, किसे किस्म दे परेशान, किसे किस्म दे नाल मेरे जीवन दे अमलां नूं कुरेद सकोगे। क्यों? नस वंजो किल विखो, करता घर आया, मालक घर आ गया है, मैं मूल नाल जुड़ गया, मैं अपने धुरे नूं फड़ लिया, मैं जी जड़ लग गई है, मेरे अंदर उस परम आनंद दे नाल एक रिलेशनशिप बिल्ट हो गई है। मन तन रव रहिया प्रभ परमानंदा, ते होया कि चित ग्रह सोह लड़े कोड आनंदा। कोड लफज बाणी च बड़ी बार दोहराया गया है, असी बचन पढ़ते हाँ करीब, श्री जपजी साहब भी पढ़ो जो कंठ बाणी है, करीबन करीबन सरल ते है सबन। साहिब महाराज जो ये जिक्र करते हैं, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। कोड कौतक, एक इस, क्योंकि असी अज जिहड़ा साडी खुशी का प्राप्त करन दे सोर्सिस की ने, इंटरटेनमेंट, कोड तमाशे, असी इहो देखदे, इहो देख के असी खुश हुंदे हाँ। ते सच्चाई यह है कुदरत अपने आप दे विच बड़े कोड बड़े कौतक रचा के बैठी है, जिहड़े उस कुदरत दे नाल उस अलाही नातेदारी नूं स्थापित करदे ने, उन्हां दे बचन असी पढ़ो गुरु अर्थ गुरु नानक पातशाह दी अपनी पावन बाणी दे विच। जो साहिब महाराज ने बलिहारी कुदरत वसिया, उस कौड़ नूं वेख्या, उस सारे कुदरत विच रवे हुए उस अहसास नूं गुरु महाराज ने मानिया है। यह सच का तमाशा, सच का कौतक है। साहिब पातशाह जिक्र कर रहे हैं, कहन लगे चित ग्रह सुहलड़े कोड़ आनंदा। उस ग्रह के अंदर, जिस ग्रह के अंदर परम आनंद आके वस गया, करोड़ा आनंद, उस अनेक प्रकार के कौतक तमाशे उस जीवन के अंदर अपने आप स्थान बना लेंगे उस हिरदे के अंदर। अगला वचन कहा, हर कंत अनंत दयाल श्रीतर गोबिंद पतित उधार नो। रब्बी वजूद नू उदे गुणा दे नाल उदी हस्ती नू दसिया, जिहड़ा परम आनंद हिरदे के अंदर आके वसिया। हर कंत तो मेरा साई है, मेरा मालिक है, असल दे विच अनंत दयाल श्रीधर, अनंत जिहदा उरवारला ते पारला बन्ना कोई नहीं दिसदा, जिहनू भट्टा ने इस तरह अपनी पावन बाणी च बयान किया सीगा। वह कहन लगे भी अमृत प्रवाह पर अतुल पंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर परे तो परे परे तो परे अपार अनंत जिहदे कोई उरवारले पारले बन्ने नूं नहीं माप सकदा। दयाल दया दा सोमा, श्रीधर श्रीमीन माया धर्मीन पति, जिहड़ा सब कासे दी जिहड़ा है मलकीयत रखदा है। गोबिंद गो धरती, बिंद बिंदन वाला, धरती नूं साजन वाला, पतित उधार नूं। ते सब तो वड्डा गुण जिहड़ा पतितां नूं पावन कर देंदा है, ऐसे परम आनंद दे नाल मेरा जुड़ा होया है। अगला वचन लिखिया, प्रभु कृपा तारी हर मुरारी ऐ सिंध सागर तारनो। वो अकाल पुरख वाहिगुरु कैसा है? कृपा करन वाला है। सिंध सागर तारनो, सिंध लफज से जेड़ा सागर लफज है सिनोनिम ने, एक दूजे दे अक्सर बाणी च एक तो वधीक लफज अपनी बात नूं स्ट्रोंग ढंग नाल कहण वास्ते गुरु महाराज प्रयोग करते हैं। भव सागर जिन्हों कह दें, तम सागर कह दें, डरदा सागर कह दें। गुरु पातशाह कहते हैं इस सारे तो तारन वाला है। आखिरी बचन जो बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है अक्सर रब्बी सुभा नूं बयान करने वास्ते, साहिब महाराज कहिंदे ने जो शरण आवै ਜਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ, ਸੰਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਸੰਧੜਾ, ਸੰਧੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਸੰਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਕਾ ਕੇ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਨੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੂਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਮੂਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਤਨੇ ਮੁਰੀਦ, ਇਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖ, ਦਾਨੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖੀਰਨ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਅਸਤਰ ਬਸਤਰਹੀਨ ਸੋ ਖਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਗੀ ਔਖਤ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਇਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਏਕ ਖਜ਼ਾਨਨ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੀ ਉਨਕੋ ਆਸ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ, ਸਦਾ ਕੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਖਵਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਖ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਦਿਮ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ, BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

मापे बड़ा हैरान होए ने, पिंड वाले दंग रह गए ने। यार मित्र सोच रहे सी निदान सिंह नु की हो गया, ओ किधर तुर गया। सारे पिंड दे सियाणियां बंदियां ने बाबा जी दे पिता भाई उत्तम सिंह नु किया, उत्तम सिंह तेरी किसे नाल दुश्मनी नहीं, तेरा पुत्र नेक है, ये ना समझ ली किसे ने मार दिता होवेगा, ये समझ लेना चाहिदा है, हो सकदा है ओ किसे रिश्तेदारी विच चले गया होवे। पिंड विचों घोड़ियां लईयां, पिंड दे बंदियां नु नाल प्यार कीता, कोई रिश्तेदारी कोई घर काट कोई थां नहीं छड्या जिथों बाबा निधान सिंह दा पता ना कीता गया होवे। याद रखो हार के लब के थक के आसां दी ढेरी ढा के मापे बह गए ने, ओ करन की, क्योंकि जान वाले दा कोई पता नहीं लग रहा। हर बंदे दा पिंड विच कोई ना कोई मित्र होया करदा है, जिदे तों दिल दी कोई भी गल नहीं लकाया करदा। पर याद रखो बाबा निधान सिंह साहब जी ने ए पेट किसे नूं नहीं दिता, रब जानदा सी किवें विराग विच आए, अपने घरों निकल तुरे ते किधर नूं जा रहे ने। इधर कई दिन मां ने रोटी नहीं खादी, भरा उधरे ते घबरे बैठे रहे, पिता सोचदा सी की हो गया निधान सिंह नूं, ओ किधर तुर गया। आओ इधर परिवार लभ के हंब के थक के बैठ जांदा है, ते उधर रब्बी मौज विच आया संत बाबा निधान सिंह साहब जी अपने पिंडों केड़े पासे नूं तुरिया, ओ किथे गया, आओ जरा दर्शन करिए क्यों बयान कीता।

रोवो ना बेटा हंसो देख मुझको मैं शीश की भेंटा चढ़ाने चला हूँ। गिर गए जो मंदिर गराए और अंगे फिर से मैं उनको बनाने चला हूँ। जो जंजू को तोड़े और चोटी को काटे वही तेज खंजर मैं खाने चला हूँ। मेरी बसी दुनिया उजड़ जाए बेशक मैं हिंदुओं की दुनिया बसाने चला हूँ। मेरे बच्चे रोते रहे तो मैं खुश हूँ मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूँ। करो सब्र बेटा जाओ लौट पीछे मैं धर्म का झंडा जो लाने चला हूँ। ना आंसू बहाना मेरी लाश ऊपर मैं आंसू को बालम सुखाने चला। 9 साल की उम्र तन कलगी पर दातार सते पातशाह महाराज किसे दे दर्द नू ना सहार दे। आप गुरु तेग बहादुर साहब जी नू बेनती करदे ने कहंदे पिता जी जे इन्हां लोकां दा धर्म खतरे विच है किवें बच सकदा है। तन गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे कोई धर्मात्मा कोई सतपुरुष कोई बंदगी वाला अपने प्राणा की आहुति दे दे। बाला प्रीतम गुरदेव सतगुरु कहंदे पिता जी है कोई जां मैं दसां मेरे लाल जी तुसी दस दिओ। पिता जी सच पुछदे हो इस संसार दे अंदर तुहाडे वर्गा परमात्मा केड़ा हो सकदा है। ये कार्य आप ही कर लेना चाहीदा है। जे लखां लोग यतीम होण तो बच जाण ये सौदा महंगा नहीं ये सस्ता है कर लेना चाहिए। प्यारे गुरसिखो किसे नू यतीम हुंदिया नहीं वेख सकते किसा दे पुत्र नू खत्म हुंदिया मुकदे दुनिया चो नहीं वेख सकते। उन्हां दा दर्द अपने हिरदे विच आप यतीम होना प्रवान कर लेंदे ने कलगियां वाले दातार सच्चे पातशाह। दूजिया दे दर्द नू अपने हिरदे विच वसा के एक शहर ने बड़ा सोहना लिखिया कहिंदा सिर दे के पूरा सवाल करिए सिर दे के पूरा सवाल करिए खाली किसे सवाली नू मोड़िए ना। पत्थर आप जहान दे चल लईए शीशा दिल पर किसे मन दी मोह दी अंदर बेड़ी फथी अपनी सब कुछ वार दईए दीदी बां फड़िए मुड़ के छोड़िए ना। तन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने मनुखता दे भले वास्ते अपने गुरदेव पिता जी नू तोर दिता है जिन्हां दी दिल्ली दे चांदनी चौंक दे अंदर शहादत हो गई है। अज धन गुरुदेव पातशाह महाराज कितने अपने शहीद पिता के शीस नू तकदे ने उन्हां दे शीस दा संस्कार आनंदपुर साहब की धरती से करदे ने। पर अज किहो जिहा वक्त आया अज मेरे कलगीधर पातशाह महाराज इस समय तो लगभग 29 साल बाद चमकौर साहब की हवेली दे विच अपने पुत्रां नू मनुखता दे दर्द नू अपने हिरदे विच रख के अणख ते शान दी जिंदगी जीउण वास्ते लोकां नू प्रेरित करदे होए दबे कुचले ते ढेंदे कला वाले मनां नू उच्चियां करदे होए मेरे गुरदेव पातशाह अज सारा कुछ वार के मनुखता दे उत्तों आप माछीवाड़े दे संघणे जंगल दे अंदर एक बाग विच पिंड दा सराहणा ला के सुते ने। नजदीक कुछ पए होए पत्तर कुछ पईयां होईयां टहणियां एक दीवार दी तरह ने इधर मेरे गुरदेव पातशाह महाराज जी दे नाल जो इस चमकौर साहब की हवेली विचों नाल तुरन वाले साथी निखड़ गए सन ये मेरे दातार जी दे बख्शे हुए निशानदेही दे अनुसार चलदे चलदे इसे ही माछीवाड़े दे जंगल विच इसे ही खूह दे उते इस बाग दे विच आण पहुंचे ने। जेड़ा खूह गुलाबे ते पंजाबे दा है जेड़े कदे मसंद होया करदे सन प्यारे गुरसिखो मेरे दातार सच्चे पातशाह महाराज जी दे नजदीक पहुंच गए। इतिहास कहिंदा है उस वेले मेरे दातार जी दे दर्शन तां कीते इस बाग दे रखवाले ने आए हुए इन्हां तीन गुरसिखां दे दर्शन करके उन्हां नाल विचार करन तों बाद कहण लगे तुहाडे वर्गा एक ओह थोड़ा जिहा अगेरे धरती दी हिक दे उत्ते लम्मा पिया आराम कर रहा है समझ लिया कोई बहुती देर ना लगी। प्यारे भाई दया सिंह जी अपने साथियों समेत अगेरे वधे दातार जी दी उंगल विच पिया होया गुल स्त्राण जेड़ा चमका मारदा है तलवार दी मुठ ते पिया होया मेरे गुरदेव सतगुरु पातशाह महाराज जी दा हथ नेड़े हो के प्यारे भाई दया सिंह जी ने तकिया चरणा ते नमस्कार करके जगाना चाहुंदे ने पर मेरे गुरदेव दे पैरां विच पए होए छाले ते वगदा होया खून तक के मन भर आया। सुचा चोड़ा जेड़ा जंड ते करीरां दी लपेट विच आउंदा थां थां तों लीरां लै चुकिया सी पर कमर कसा बजा होया मेरे गुरदेव सतगुरां दे लक दे नाल
ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਹਿ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮਖਮਲੀ ਕਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤ ਗਾਵਿਆ, ਸਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਡਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ

0: के ब्राह्मण व्यास करे चौबीसा
1: काजी मैं रमजाना
0: आने रमजान का महीना गुजरे ना रोजा का महीना श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किसका जिक्र है
1: कहे ब्राह्मण ने आख्या तू 24 एकादशियां का व्रत रख ले बस तेरा सारा साल पवित्र हो गया
0: प्रवान
1: ब्राह्मण ग्यास करे 24 24 एकादशियां क्योंकि हर 15 दिन बाद एक एकादशी आती है मत्स्या तो बाद पूर्णमासी तो बाद साल में 24 एकादशियां होंगे कहन लगे ब्राह्मण ने आख्या जे तू 24 एकादशियां का जी करीब महीना बन दिया जे भला 24 एकादशियां का व्रत रख लें बस तेरा जीवन प्रवान है सारा साल प्रवान है काजी मैं रमजाना काजी ने आख्या जे तू रमजान के महीने रोजे रख लें बस तेरा सारा साल प्रवान है सतगुरु बाणी विच दे रहे कहते ब्राह्मण ग्यास करे 24 काजी मैं रमजाना पर गुरु अपनी दसन तो कहने के भी अजीब घटना है 11 मास पास कर रखे एक मैं निधन अगर 11 महीने एक पासे रख दिते एको महीने में ती सारा खजाना लुटना चाहूंगा केड़ा भलेखे विच है सज्जन केड़ा व्यंग कीता कहने लगे ब्राह्मण ग्यास करे 24 काजी मैं रमजाना 11 मास पास कर रखे एक मैं निधन 11 महीने एक पासे रख दिता कहता एको में ही सारा खजाना मिल जाए तो वह गल अगसिया में भी आ गई अक्सर मैं डेरे कहते सुने गए बस माघ के महीने का इशनान सब तो पवित्र है माघ के महीने का जपया हुआ नाम सब तो माघ के महीने ने नाम वड्डा कर देना इन्हें मतलब किसी महीने किसी दिन वार ताकत है नाम उदो वड्डा कर सकती जो पहला ही वड्डा है जिंदा तो वड्डी होर कोई चीज है ही नहीं इनका मतलब कोई महीना कोई दिन ऐसा है जरा नाम की वड्याई अजे छोटी है उन्होंने उदो वड्डा करता है किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी वक्त जदों तेरी रचना ते सिमरन आ जाए जदों तू गुरु नाल जुड़ जाए जदों तू बाणी नाल जुड़ जाए वही समा पवित्र हो जाता वही समा पवित्र हो जाए पर मनुख के द्वाले ऐसा जाल बुन दिता गया कि मनुख दिन रात इन्हों चीजों मनाने में लगा रहा इन्हों चीजों मनाने का मतलब से इन्हों को खौफ खाता डरता बिल्कुल उस तरह जिवें मां ने बच्चे नूं आख्या तैनूं फलाने कोठे च बंद कर देंगी बस इसे डरों उहदा काम करी जांदा सी पर अज जिहड़ा शब्द सरवण कर रहे उहदे विच सतगुरु ने बड़ी बख्शिश की सी कहण लगे मनुख ग्रहां कोलों डरी जांदा सी मनुख शगना अपशगना कोलों डरी जांदा सी ते उहनां दे चक्कर विच पिया होया उहनां दे भय दे डरों जीवन भर उहनां दी डर थले जिंदगी पे बिता आ नहीं करना कि फलाना नाराज ना हो जाए पर गुरु ने अपनी रचना तो केड़ा खूबसूरत जवाब दिता कह लगे जिस दिन का मैनू प्रभु की बंदगी हरी कीर्तन की ताकत मिली बल मिलिया कह लगे सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ गुरु ने जिन्ने ग्रह सन मेरे पिछले ब्राह्मण लाए हुए कि फलाना काम करेगा फलाना नाराज हो जाएगा आ ना करी ओ ना करी बस ऐसे फलाने नु मनाने की लोड़ है ऐसे अग नु मनाई ऐसे सप नु मनाई कुछ ना कुछ मनाने के द्वारा ही मैं सारी जिंदगी पसार रहा पर मेरे को एक गुरु मनाने का चेता रह गया गुरु ने फैसला दिता कहन लगे

हर चीज तने गा सारे सुख तेरी झोली पै जाएंगे जिस दिन तू हरी कीर्ति विच प्रभु दे गुणा नाल जुड़न दा सुभाव बना लेंगा। विश्वास कर, देख पहलाद वाल, पहलाद कोठे विच रखिया बाहर दिया ताला, पर होया कि निरपहु बालक मूल ना डरे, और डरिया नहीं, उनके मन विच भय नहीं आया। देख, जे तू श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की, गुरु नानक की बाणी की गोदी विच पलेगा, तेरी आत्मा इन्नी बलवान हो जाएगी। जे तू श्री गुरु ग्रंथ साहब की गोदी विच अपना जीवन नू पालेगा, विश्वास कर, तेरा मन इन्ना बलवान हो जाएगा, फिर कोई सनीचर, कोई मंगल, कोई राहु केतु, कोई आसमान दे रहने वाला सूरज ते चंद्रमा, कोई धरती ते बलन वाली अग दियां लाटां ना तेनू जला सकनगियां ना तेनू मार सकनगियां। गुरु ने इहो गल